0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়া ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नीना रखेल। Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Umalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs. Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. These routes cover 11,000 kilometers railway networks and four lining of 2,000 kilometers has been completed. These approved projects for four lining are related to the high density railway networks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the 5 railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. The Prime Minister also said that the Cabinet decision pertaining to 3 multi-tracking projects worth over 10,500 crore will add additional railway network and improve connectivity across Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. He added that it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife related tourism, and lower logistic costs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said, India has focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. International Atomic Energy Agency, IAEA, has referred Iran to UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5 with 8 abstentions. In the U.S. Open, Americans Ben Shelton, an 11th seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face third seed Jessica Pegula, while fourth seed Coco Gauff will play Alina Rybakina of Kazakhstan. And that is the end of this news bulletin.
0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1026 কিলোহাৰ্জত। অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात

0: কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। মেৰা ৰেশম মেৰা অভিযান আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধীনত আয়োজিত এই প্ৰশিক্ষণত ঢকুৱাখানা সমজিলাৰ 124গৰাকী মুগা কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীতে কৃষকসকলক মুগা পালনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি বুলেটিন পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने

0: करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: Women, we open their bank accounts.
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
4: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
6: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
7: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: Women, we open their bank accounts.
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India has focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth.
3: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't.
6: Defence Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defence Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defence partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi in New Delhi last month. The defence minister said mutual exchanges of visits, such as Exercise Veer Guardian, further strengthens this synergy. The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said 3 projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers to the existing railway network. Director General of the World Health Organization, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, met Union Health Minister Jagat Prakash Nadda on the sidelines of the 79th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia in Delhi, Timor-Leste. Dr. Tedros congratulated Mr. Nadda on India's significant health gains, particularly in maternal and child health, and the fight against non-communicable diseases. In a social media post, the WHO Director General said, through 160,000 Ayushman Arogya Mandirs, India is bringing screening for hypertension, diabetes and common cancers closer to communities with referral pathways for further care. Prince Rahim Agha Khan V, the 50th hereditary imam of the Ismaili Muslim community and chair of the Agha Khan Development Network, has arrived in New Delhi on his maiden visit to India. He was welcomed by an Indian delegation on his arrival. The Ministry of External Affairs extended a warm welcome to Prince Rahim Agha Khan V, saying the visit will provide an opportunity to review ongoing cooperation with the Agha Khan Development Network in social development and heritage preservation, and explore collaboration on development and community initiatives. India has stepped up its humanitarian assistance to flood-hit Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies that landed in Kathmandu yesterday. The Ministry of External Affairs said the latest consignment includes National Disaster Response Force equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. Benchmark domestic equity indices were trading marginally down during the forenoon session today. The Sensex dropped 43 points to 74,722, while the Nifty dipped 21 points to 23,411 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाइयों, हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरमय गीतों का सुहाना सफर। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सैनिक भाइयों, अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम साज और आवाज, 1:05 पर हम सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम स्वर छाया, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, दिन के 2:00 से मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले, और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं पहला गीत कैलाश खेर की आवाज में साथ उसके फिल्म से। बोल है कुमार के और संगीत से सजाया है विवेक कर ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म से मिक्का और तालिया बेंसन की आवाजों में। बोल है शबीर अहमद के और संगीत से सजाया है चिरंतन भट्ट ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में। बोल है मनोज मुंतशिर के और संगीत से सजाया है अंकित तिवारी ने।

0: सैनिक भाइयों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे तेजाब फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
1: हाँ।

0: इसी गीत के साथ दैनिक कार्यक्रम आज का गीत यहीं समाप्त होता है।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रांत ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम साज और आवाज, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हर दिन की तरह 12:10 पर हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में और सुनवाएंगे दिन का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर बंदगी के गीत और भजन। 1:05 पर सुनवाएंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

पर 10 मिनट पर कार्यक्रम सबरंग, 1:40 पर गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम, 2 बजे से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा गीतिका और इसी के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम साज और आवाज। आइए सुनते हैं पहला धुन वीर जारा फिल्म से।

सैनिक भाइयों भाइये सुनते हैं धुन पर आधारित गीत लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब से आप हमारा ये प्रसारण डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर सुन सकते हैं। सैनिक भाइयों, हवा चली और कंधे से सरकती हुई चुनरी जरा सी लहराई। बस इतनी सी बात थी, लेकिन उस पल में जैसे कोई पूरा गीत छुपा हुआ था। कभी किसी की चुनरी ने नजरें रोक ली, कभी वही चुनरी चेहरे पर आकर शर्म का पर्दा बन गई, कभी हवा के साथ दूर तक लहराई और कभी किसी की याद बनकर चुपचाप तह रख के रख दी गई। चुनरी भी बड़ी अजीब चीज है, सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, अपने साथ जाने कितने मौसम, कितनी शरारतें, कितनी यादें लेकर चलती है। और जब यही चुनरी गीतों में उतरती है तो लगता है जैसे हवा भी थोड़ा और ठहर कर चल रही हो। तो आज के स्वर छाया में बात सिर्फ उस चुनरी की, और शुरुआत उस चुनरी से जो आते ही पूरे माहौल में शरारत घोल देती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

सैनिक भाइयों, कुछ चुनरिया ऐसी होती हैं जिन्हें संभालने की कोशिश करो तो और उड़ने लगती हैं। कभी कंधे पर टिकती है, कभी हवा पकड़ लेती है और कभी यूं ही पीछे लहराती हुई किसी की नज़र अपने पीछे खींच लेती है। और शायद चुनरी की यही अदा है, वो खुद कुछ नहीं कहती लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। बस ज़रा सी हवा और उसकी लहर में पूरी कहानी। कभी कभी चुनरी का सबसे खूबसूरत ठिकाना कंधा नहीं, चेहरा होता है। चेहरे पर आती हुई चुनरी और उसके पीछे छुपती हुई दो आंखें। बात वहीं खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से शुरू होती है। एक तरफ चेहरा छुपा हुआ, दूसरी तरफ आंखें सब कहती हुई। और फिर जरा सी हवा चलती है, चुनरी हटती है, नजरें मिलती है और अगले ही पल फिर से चेहरा छुप जाता है। चुनरी की ये लुका छुपी भी तो कमाल है। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

सैनिक भाइयों, चुनरी सिर्फ ओढ़ी नहीं जाती, कभी कभी उसे यूं ही उंगलियों में थामकर हवा के साथ खेलने दिया जाता है। उसका एक सिरा हाथ में, दूसरा हवा में, और लगता है जैसे हवा ने भी कोई रंगीन पतंग पकड़ रखी हो। कभी वो आगे निकल जाती है, कभी पीछे छूट जाती है, और कभी अचानक आकर चेहरे को छू जाती है। कितना छोटा सा पल होता है ये, लेकिन याद में बहुत देर तक रहता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सैनिक भाइयों, एक चुनरी का अपना भी तो सफर होता है। कभी वो किसी के कंधे पर होती है, कभी सिर पर सजी होती है, कभी हाथों में थमी होती है, और कभी किसी पुराने संदूक में रखी हुई बस एक तह बनी रह जाती है। लेकिन उस तह के भीतर भी कितनी बातें छुपी होती है। किसी दिन पहनी थी, किसी खास मौके पर, किसी खास के सामने, और फिर जाने कब वह चुनरी कपड़े से बदल कर याद बन जाती है। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

सैनिक भाइयों, चुनरी जब हवा में लहराती है तो उसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। वह कभी इधर जाती है, कभी उधर, जैसे हवा से उसकी पुरानी दोस्ती हो। लेकिन जब वो चुनरी किसी के हाथ में आकर रुकती है तो उसकी चंचलता अचानक थम जाती है। उंगलियों में पकड़ी हुई चुनरी हल्की सी सिकुड़ी हुई और फिर धीरे से कंधे पर रख दी गई। बस इतना सा दृश्य भी कितना अपना सा लगता है। इसी एहसास के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिष पुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज हम आपको सुनवाएंगे मिले जुले प्रांतों के गीतों को। आइए सुनते हैं पहला पंजाबी गीत दिलदारा एल्बम से विनोद सहगल की आवाज में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंतर्गत अगला राजस्थानी गीत आइए सुनते हैं। राजस्थान के गीत एल्बम से सुरैया बेगम की आवाज में।

0: also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concerned in Baltara, in Khagadia and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhishree for Akashwani News, Patna.
1: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक

0: क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारविल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारदंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने

0: अमरीकी ओपन पुरुषों सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आइए सुनते हैं ले चल अपने संग फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, गीत रंगीले कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म से रूप कुमार राठौड़ की आवाज में।

सैनिक भाइयों, गीत रंगीले कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम गीत आइए सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

सैनिक भाइयों, इस गीत के साथ गीत रंगीले कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल दोपहर 12:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं अंशु झा लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: उदासियों की शाम कभी इतनी गहरी नहीं होती कि उम्मीदों की सुबह का सूरज ना निकल सके। बस खुद से खुद का एक वादा जरूरी है कि हर मुश्किल में भी जिंदगी के कदम आगे बढ़ते रहें। इन्हीं उम्मीद भरे शब्दों के साथ मैं यानी नाज करती हूं आप सभी लिसनर्स का स्वागत आपके फेवरेट शो रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुनते हैं हर दोपहर 3 बजे FM रेनबो पर। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम अक्सर अपनी मानसिक शांति को पीछे छोड़ देते हैं। बाहर से मुस्कुराते चेहरों के पीछे कभी कभी कितना अंधेरा और अकेलापन छुपा होता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जिस तरह हर अंधेरे के बाद उजाला है, ठीक उसी तरह हर चुनौती का समाधान भी मौजूद है। बस जरूरत है तो सही वक्त पर सही मदद की। और आज की तारीख यानी 10 सितंबर भी हमें यही संदेश देती है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी आज का दिन मनाया जा रहा है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना आज के दिन मकसद है हमारा, और यही उद्देश्य लेकर रेडियो डॉक्टर की आज की कड़ी लेकर प्रस्तुत है हम, जहां हमारे मन की हर दुविधा को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सागर। आप नई दिल्ली एम्स के मनोरोग विज्ञान विभाग में प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, साथ ही बाल और किशोर मनोरोग में आपकी विशेषज्ञता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सबको नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून।
1: तो दोस्तों, अगर आपके घर परिवार या आपके दोस्तों में कोई भी मानसिक तनाव से गुजर रहा है या उनके व्यवहार में कोई बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, तो आज का ये शो आपके लिए है। अपने सवाल आप सीधे डॉक्टर राजेश सागर जी से पूछ सकते हैं। फोन नंबर्स इसके लिए डायल कीजिएगा 011-234-21080 या फिर 234-21082। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज आपको इसके लिए करना है 9868107070 पर। तो सर, सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जिसकी आधिकारिक थीम है चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड, यानी आत्महत्या जैसे कदम को लेकर हमारे दृष्टिकोण या धारणा को बदलना, क्यों ये जरूरी है और कैसे ये मुमकिन है?
2: सही कहा। देखिए, क्योंकि आज का दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है, जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलें और देखें कि हम किसी भी समाज के हर व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे संदेश पहुंचा सकते हैं और कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं। तो क्योंकि मानसिक समस्याएं जो हैं उसके साथ बहुत स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो कई कारण की वजह से उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो ये आज का दिन उसी पर्पस के लिए है कि जहाँ पे हम बात कर सकें। वैसे हम मानते हैं कि सिर्फ एक ही दिन नहीं होना चाहिए और ये बल्कि इसकी जो अवेयरनेस है वो हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुँचने का जो जरिया है सिर्फ एक दिन पर नहीं होना चाहिए, मगर ज़रूरी है कि कैसे संदेश जो है हम सब पर पहुँचाएँ। जहाँ तक थीम की बात कही, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है। एंड बहुत पहले एक वर्ल्ड हेल्थ डे की कुछ साल पहले थी 2017 में, उसमें डिप्रेशन लेट्स टॉक और स्टार्ट द कन्वर्सेशन का जो मतलब है ये है कि मानसिक समस्या की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वो हम अपने तक रखते हैं, अपने हम शेयर नहीं करना चाहते उसको, क्योंकि उसका भी कई कारण है, उसके कई बैरियर्स हैं, क्योंकि एक तो स्टिग्मा है, हम कंफर्टेबल नहीं हैं, अपनी मन की बात हम सबसे नहीं कह सकते, फिर हो सकता है हमें डर रहता है कहीं कोई उसका मजाक ना बनाए, तो हम अपने तक रहते हैं। तो स्टार्ट द कन्वर्सेशन का मतलब यह है कि जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं या आपका तनाव है या जो अपने तक ना रखें उसको व्यक्त करें, उसको एक्सप्रेस करें। और तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस कन्वर्सेशन को शुरू किया जाए। और ये सिर्फ लागू सुसाइड के लिए नहीं है सेल्फ, बल्कि ये किसी भी मानसिक समस्या के लिए, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है या जो भी समस्या है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे आसपास वो सब सुविधाएं, लोग मौजूद हैं, वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास तो चलो आप बाद में जाते हैं, लेकिन आपका परिवार, आपके संबंधी, आपके दोस्त, वो आप अगर कहेंगे तो वो आपका हाथ पकड़कर, आप दलदल में हो तो आपको उठा लेंगे, आपको
1: बातचीत यहाँ पर
2: बिल्कुल तो बातचीत करते हुए, क्योंकि उस बैरियर को हमें तोड़ना है। और उसमें एक बार हम शुरुआत कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर आपको उसका लाभ होगा, आपको परेशानी कम होगी, क्योंकि हेल्प हमारे आसपास ही मौजूद है।
1: बिल्कुल, सरकार की ओर से किस तरह के कदम इस तरफ उठाए गए हैं जिनकी जानकारी आम जनता को होनी ही चाहिए, ये भी आपसे जानना।
2: देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब बहुत विस्तार में भी हम चर्चा कर सकते हैं इसकी। सबसे पहला तो ये है कि 2022 में जो हमारा टेली मानस एक शुरुआत हुई थी भारत सरकार की तरफ से, और उसमें एक बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, और उसमें उसका मतलब यह है कि एक जो फ़ोन नंबर है 14416, हमेशा याद रखें 14416, तो ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आपको आपकी बात सुनने के लिए एक्सपर्ट्स होंगे, आपसे जो बातचीत करेंगे। तो वो दो टायर में है, एक तो ये है कि आपसे बातचीत करेंगे, दूसरा आपको लिंक भी कर सकते हैं आसपास के हॉस्पिटल से या आसपास के जो भी सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे भी अगर ज़रूरत होती है तो लिंक कर सकते हैं। और ये हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे देश में इसकी सुविधा है, 50 से ज़्यादा इसके सेंटर्स हैं, और ये हर कोई व्यक्ति जो है अपनी अलग अलग भाषा में भी इसका वो कर सकते हैं। और जब से ये शुरुआत हुई, हम ये बताना चाहेंगे 40 लाख लोगों ने इसकी सुविधा प्राप्त की है, जो आंकड़े कहते हैं, हर भाषा में है, तो इससे लाभ हो सकता है। और टेलीमानस एक है, उसके अलावा कुछ और हेल्पलाइंस भी हैं, कुछ एनजीओज भी हैं जो इसमें काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो भारत सरकार का यह है, दूसरा मैं जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी उसका पार्ट था, हमारे देश में शायद लोगों को नहीं पता, 2022 नवंबर में रिलीज हुआ था नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। ये 2022 में रिलीज हुआ था, इस पे पिछले उससे पहले 3-4 साल से काम हो रहा था, और ये 64 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है ये, और उसमें अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि हमें हर स्टेक होल्डर को क्या करना चाहिए, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये भी भारत सरकार की तरफ से ये पूरा स्ट्रेटजी या पॉलिसी बनी हुई है, जो हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, उसमें भी विशेष इसका जिक्र है कि सुसाइड या सेल्फ हार्म में हमें क्या क्या करना है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे हमारे भारत सरकार के प्रोग्राम हैं, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है या डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति, और ये भी बताना चाहेंगे हर जिले में, क्योंकि ये ना समझें कि जो मानसिक स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं या जो हेल्प है सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, ऐसा नहीं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, तो आप अपने PHC में या अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी सुविधा मिल सकती है। और एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये सोचते हैं कि हमें एक साइकियाट्रिस्ट से ही मिलना है, ऐसा नहीं, आप अपने जनरल डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, और अगर आप उसके बाद आपको रेफर कर सकते हैं अगर आपको
1: तो मदद के लिए कई हाथ मौजूद हैं, बस जरूरत है थामने की। तो अगर कोई हमसे हमारे अपने मन के तनाव को शेयर करता है, तो बतौर फैमिली या दोस्त हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमें उनसे क्या कहना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं कहना चाहिए? ये
2: देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, और इसी में हम बात कहेंगे कि इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड या मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, कि कोई भी सुविधा के लिए, फर्स्ट एड का मतलब है कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी भी इसकी मदद कर सकता है। और वो कैसे, जिसको हम याद रखें कि लुक लिसन एंड लिंक, तीन एल का ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति परेशानी में है, उसको आप बातचीत करें, उसकी तरफ देखें, उससे बातचीत करें, उसको एक सेफ्टी प्रदान करें। उसमें अगर हम इसकी विशेष बात करें सुसाइड के, तो उसको हम कहते हैं QPR, क्वेश्चन करें, फिर उसको परसुएड करें और उसको रेफरल दें ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके में बहुत शोध या एविडेंस या रिसर्च है इसके बारे में। तो एक तो यह है कि उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें और उससे बातचीत करें, और दूसरा जो है लिसन, कहने का मतलब उसको सुनना। अगर कोई भी व्यक्ति कष्ट में है, परेशानी में है, तो हमने देखा है कि ये मानसिक समस्या से लेकर नहीं है, इवन जनरल भी, अगर आपको लगता है आप कहीं विचलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो आप किसी से अगर बात करते हैं, अपने किसी से कोई आपकी बात सुन लेता है, तो भी आपका काफी हद तक कष्ट जो है कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो तीसरी चीज है कि लिंक का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को किसी के साथ उसको ले जाएं, जो एक्सपर्ट है उसके पास ले जाएं, या उसको कुछ पैम्फलेट देकर उसको कहें कि आप ये सब देख सकते हैं, ये जो परेशानी है इसके बारे में जानकारी है। तो इमीडिएट तरीके से ये सब किया जा सकता है। लेकिन
1: सर, बात इस पर हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी
3: ये डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सर सबकी परेशानी समझनी चाहिए।
1: जी
3: ये जी मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर साहब से, जैसे कोई घर में मतलब कोई अपनी जैसे उसे कोई दिक्कत हो रही है या कोई भी उसे दिक्कत चल रही है, तो उसे मतलब सबसे शेयर करना चाहिए या मतलब छुपाना नहीं चाहिए किसी से भी।
1: जी आप अपना सवाल पूछिए, आप डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं। जी तो सर हम बात कर रहे थे, एक आम इंसान कैसे ये महसूस करे, कैसे ये समझे कि जो उसे चिंताएं घेर रही हैं वो रोजमर्रा का सामान्य तनाव है या फिर डिप्रेशन की शुरुआत है, दोनों के बीच का वो बारीक अंतर आपसे समझना चाहेंगे।
2: देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। पहली बात तो ये है कि जब हम तनाव या स्ट्रेस की बात करते हैं, और उससे पहले मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, क्योंकि हमें बड़े परिपेक्ष में इसको समझें, जो WHO की जो परिभाषा है उसमें चार चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचाने, वन हो है, दूसरा जो रोज़मर्रा का जो स्ट्रेस है उसे दूर करे या उसे उसको कोप करे या उसको हैंडल करे। तीसरा हो गया, क्योंकि तनाव के सिलसिले में बात कर रहे हैं, और तीसरा हो गया व्यक्ति अपना काम काज ठीक तरह से करे, फ्रूटफुली डज द वर्क, एंड ऑल्सो अगर स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं तो ठीक तरह से वो पढ़ाई करें, लर्निंग करें, और चौथा है जो समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें।
1: जी
2: तो ये चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की परिभाषा है।
1: जी।
2: क्योंकि आप तनाव की बात करें तो तनाव जो है मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है, वन ऑफ द फोर है जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं, तो तनाव उसी में से है। और तनाव की जहां तक जीवन है तो तनाव है, ये मान के चलिए। और तनाव कुछ हद तक कहते हैं कि जो इवन जो एविडेंस है वो अच्छा भी होता है, क्योंकि वो इंसान को मोटिवेट करता है, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं।
1: तो सर आम भाषा में ये कैसे समझा जाए कि कौन सा स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है और कौन सा,
2: मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये ना माने कि तनाव हर प्रकार से ही खराब होता है, तो ये हम बताना चाहते हैं। थोड़ा बहुत तनाव अगर किसी व्यक्ति को है तो वो उसको मोटिवेट करता है, और ये भी कहते हैं जैसे एक उसको एकाग्रता उसको देता है, एक मोटिवेट करता है किसी भी को काम करने के लिए। तो ये जब भी इसकी चर्चा करते हैं तो एक यू शेप कर्व होता है, तो थोड़ा बहुत एक पीक परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस या ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए कुछ हद तक तनाव जरूरी है। अब जो सवाल आपने किया कि कब कहें कि ये ज्यादा है, देखिए ज्यादा जब है, जो सिंपल रूल है इसका, अगर कोई भी चीज एक्सेसिव हो जाती है या आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आपको तनाव लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, आप तनाव की वजह से आपके शरीर पे उसका अफेक्ट आने लगा है, तनाव की वजह से आपकी नींद नहीं आ रही है, तनाव की वजह से आपको बदन में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, आपका इतना सीवियर हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एग्जांपल देते हैं, अगर एक भरे हुए ग्लास को आप पकड़ते हैं, थोड़ी देर तक पकड़ लेंगे, लेकिन अगर उसी को कहें कि अब मैं 2 घंटे तक करूं तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, तो उसी तनाव को आप अपने अंदर इतना रखेंगे तो उससे उसका प्रभाव आने लगेगा। तो वही चीज जो है जो कुछ हद तक आपको मोटिवेट कर रही थी क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड थी, लेकिन वो चीज अगर ज्यादा हो गई तो और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई या उससे आपके शरीर पे अफेक्ट आने लगा या उससे आपकी फंक्शनिंग में अफेक्ट आने लगा या उससे प्रॉब्लम शुरू हो गई, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या आपको फिजिकल बीमारी हो, फिजिकल का मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तब वो एक चिंता का विषय होता है और वो ऐसा है कि जिसका समाधान है और उसका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। तो ये फर्क समझे अगर हम तनाव की बात करते
1: जी,
2: हैं
1: बिल्कुल। तो मानसिक समस्याएं जो है शारीरिक ना बनने पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बातचीत इस पर हम जारी रखेंगे, एक अच्छा सा गाना पहले सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल
1: सर।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप, जहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सागर। आप नई दिल्ली एम्स के मनोरोग विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं और साथ ही हमारे मन से जुड़ी हर उलझन को सुलझा रहे हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शरीर पर, हमारी शारीरिक गतिविधियों पर कोई असर ना पड़ने पाए, इसका हमें ख्याल रखना है। लेकिन शारीरिक संतुलन का क्या संबंध है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से, ये अब आपसे समझना चाहेंगे। मसलन खान पान या फिर जीवन शैली का कितना कैसा असर पड़ सकता है?
1: देखिए, बहुत जरूरी है इसको समझना। जैसे हम कहते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप,
0: जी,
1: तो हमारा मन और शरीर हम कहते हैं अलग अलग है, मगर एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, चाहे वो मन का प्रभाव शरीर पे हो और शरीर का प्रभाव मन पे है।
0: जी।
1: उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आपको मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक मान लीजिए एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन है, तो उसके कुछ लक्षण जो है शारीरिक भी होते हैं, जैसे आपकी भूख लगना कम हो गया या वजन कम हो गया या आपकी नींद आपको कम हो जाएगी आपकी या ज्यादा हो सकती है
0: जी।
1: या हो सकता है कि आपको थकावट महसूस हो, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं रही मेरे शरीर में। तो हमारे हालांकि ये सब मानसिक बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मगर इसका असर जो है शारीरिक, जैसे एंजाइटी में हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो शारीरिक सिम्टम्स होते हैं उसका अफेक्ट माइंड पे भी होता है। और बॉडी में जैसे कहते हैं, मान लीजिए आपको हार्ट की बीमारी है या आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो जो वैसे मेडिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, शरीर की प्रॉब्लम, मगर उसका अफेक्ट माइंड पे भी होता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर आपको बुखार भी हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो आपको लगता है मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया, उदास हो गया, तो आप देखें कि इन सब का बड़ा गहरा संबंध होता है माइंड और बॉडी का एक दूसरे का इंटरेक्ट करने के लिए। जहां तक बताया खान पान का, और इन सब का बहुत बड़ा अफेक्ट होता है माइंड पे भी, और जैसे आपकी जीवन शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें, जैसे फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम लें, तो ये कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी आप नियमित रूप से करते हैं 30 मिनट रोज, तो आप जो है डिप्रेशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को।
0: अच्छा।
1: तो और फिजिकल एक्टिविटी का रोल जो है सिर्फ डायबिटीज या हाइपरटेंशन में नहीं है, वहां तो डॉक्टर बोलते ही हैं, लेकिन मानसिक बीमारी में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ ओपीडी कार्ड देते हैं, तो हम उसमें कभी कभी लिखते हैं कि भाई फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका वजन ना बढ़े, उसके अलावा ये भी है कि आप थोड़ा सा एक्टिविटी आप करते हैं तो उसका एक साइंटिफिक उसका प्रभाव भी पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: उसी प्रकार से लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे प्रॉपर नींद लेना, क्योंकि नींद का भी संबंध आपके माइंड पे बहुत है, क्योंकि आपके माइंड में प्रॉब्लम है तो आपकी नींद कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड हैं आप, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो नींद अगर आपकी नहीं आई है प्रॉपर, आप नहीं सो पाए हैं, तो आपने देखा होगा अगले दिन आपका मन जो है चिड़चिड़ा रहता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं। तो नींद का बहुत बड़ा प्रभाव है, खाने पीने का भी आपका प्रभाव है। जब हम यही कहते हैं कि बैलेंस डाइट लो ना, तो आपका उससे भी रिलेशन आपका माइंड का होता है। तो ये सब चीजें जो हैं शारीरिक या लाइफस्टाइल रिलेटेड, उन सब का अफेक्ट हमारे माइंड पे होता है, और इस पे पूरा एविडेंस है, पूरा शोध है, और इसीलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। और इसीलिए अगर किसी को माइंड की समस्या है, कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स है, तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या सब चीजें बताई जाती हैं। इवन योगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन योगा एडिशनल, अगर किसी को बीमारी है, अक्सर हम ये कहते हैं उसको रिप्लेस ना करें योगा को ट्रीटमेंट से, लेकिन ये सब एडिशनल चीजें हैं, योगा मेडिटेशन और ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब चीजें हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करती हैं और उसको उसमें कमी ला सकती हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना वो अलग बात है, वो जरूरी है।
0: बिल्कुल सर, फिजिकल एक्टिविटीज के साथ जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, क्या वो भी इसमें मदद करती हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो कोई भी व्यक्ति जब हमारे क्लिनिक में आता है, तो उसमें अब एक तो यह है कि हम काउंसलिंग कर बातचीत करते हैं और उसको दवा की जरूरत होती है दवा देते हैं, फिर उसको फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है, अक्सर हम अपने कार्ड में भी लिखते हैं आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट है, या ये भी जरूरी है अपने तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि तनाव का जो इलाज है एक तो हो गया, हम हमेशा सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा थेरेपीज हैं या हम अलग अलग किस्म का थेरेपी लेंगे या एक्सपर्ट से मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप कर सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो गया, या अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए हम जो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना या म्यूजिक सुनना या फिल्म देखना या जो लोगों से बात करना। तो हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है। हम जो है हम हमेशा ये कहते हैं एक ये जो चीज़ें हैं ये एक मेनू की तरह, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको इतने सारी चॉइस है, आप एक या दो लेते हैं, आप सारी तो नहीं लेते हैं। तो हो सकता है आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है लोगों से बात करना अच्छा लगता होगा, तो आपको जो अच्छा लगता है अब वो कीजिए आप, तो उससे आपका चाहे एंटरटेनमेंट है या हॉबीज है या आपकी जो, उसको ना छोड़िए, क्योंकि दिन में कुछ वक्त अपने लिए रखिए, जो आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन आप उससे आपका मन और बेहतर होगा और आपको खुद अपने आप में अच्छा लगेगा, तो वो सब भी करना जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ वो दवा से जितना ही जरूरी है इफ नॉट मोर, तो वो भी उसमें भी उतना ही ध्यान दें।
0: बिल्कुल, जितना जरूरी है उतना जरूर करें, लेकिन सर जरूरत से ज्यादा हो जाए, यहाँ मेरा मतलब थोड़ा सा स्क्रीन टाइम से है, खास तौर पर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में। क्या बच्चों में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बिहेवियर में, या देख रहे हैं हम कि कम उम्र में डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं बच्चे, तो क्या उसका एक कारण बढ़ता स्क्रीन टाइम है?
1: देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आज से आप 20 साल कहें तो वो नहीं था, ये तो आज के दौर की बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्क्रीन टाइम है या टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ये बढ़ने से इसका जो इफेक्ट है हमारे मन पे पड़ा है, शरीर पे भी पड़ा है, क्योंकि आपकी आंखों में या आपकी गर्दन में या आपके शरीर में दर्द होता है, तो उसी प्रकार आपका मन में भी पूरे इसके एविडेंस है, पूरा शोध है, जहाँ पर ये देखा गया है कि आपकी एकाग्रता में समस्या हो सकती है, आपके मन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नींद में समस्या हो सकती है, तो और कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो खासकर यंग जो बच्चे हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं या सोना बंद कर देते हैं, तो वो एक समस्या का विषय ज़रूर होता है। और लेकिन ये है कि इसीलिए जैसे सोशल मीडिया का बैन है कुछ देशों में, 16 से कम की आयु

0: स्क्रीन टाइम में अपना ध्यान लगा रहा है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति उदास है, लोगों से मिलना नहीं चाहता, कमरे में बंद है, तो वो ज्यादा क्या करेगा, वो अपने कमरे में बैठकर स्क्रीन टाइम बढ़ाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी फैमिली पेरेंट्स ये सोचे ना कि उसकी फेस वैल्यू पे कि ये सिर्फ स्क्रीन टाइम देखने में इतना टाइम दे रहा है और उसको कभी कभी गलत व्यवहार करते हैं या उसको फिजिकली उसको भी डांटते भी हैं, लेकिन ये सोचें कि कहीं उसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्या उसको कुछ समस्या है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्ट करें, क्योंकि रूट जो कॉज है वो हो सकता है और ये जो स्क्रीन टाइम है वो उसका इफेक्ट है। कहने का मतलब यह है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि उसको एक टोटालिटी में लें, परिवार के परिपेक्ष में लें, और ये भी देखें कि आप एज ए पेरेंट बड़े, आप कितने बड़े एग्जाम्पल हैं, आप अपना स्क्रीन टाइम कितना रखते हैं। एक तरफ तो आप उसको मना कर रहे हैं लेकिन आप खुद यूज कर रहे हैं,
1: बच्चे वही करते हैं जो
0: तो जो देखते हैं। तो उस तरह से कई सारे डिटॉक्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं कि मुझे डिनर के टाइम पे नहीं यूज करना, सभी मना कर सकते हैं, या इस कमरे में मैं जब हूँ बेडरूम में तो मुझे यूज नहीं करना है, तो ऐसे सारे रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं डे में जो जो इम्पोर्टेंट है। और खासकर ये देखा गया है कि जो एवरेज यूज है हमारे देश में 5 घंटे से ज्यादा है, तो कम से कम उसको कट करना चाहिए। और ये समस्या जो है, लेकिन इस पे समाधान हो सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका मॉनिटर करें, सुपरविजन करें, पेरेंट भी सही एग्जाम्पल दें, और तो ये और अगर समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, तो ये और उसको अल्टरनेटिव दें, मान लो फिजिकल एक्टिविटी उसको कहें, उसका एक बैलेंस होना जरूरी है कि ये भी देखो मगर फिजिकल एक्टिविटी भी करो, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, तो ये सब भी जो बैलेंस होना ये क्रूशल है, ये इम्पोर्टेंट है।
1: तो जरूरत और अनुशासन, ये दो चीजें हैं जो आपको बेहतर मानसिक स्वास्थ्य दे सकती हैं। सर एक सवाल हमारे पास आया है, बलजिंदर सिंह जी का है, कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ये डिप्रेशन में चले गए थे और किसी से कनेक्शन नहीं रहा फिर, और अब ठीक है पर इंटरेस्ट लॉस हो चुका है, किसी चीज को करने का मन नहीं करता, और इसको कैसे मैं ठीक करूं, दोबारा अपना इंटरेस्ट कैसे अपनी हॉबीज में जगाऊं।
0: देखिए सही है, बलविंदर जी ने, बलजिंदर जी ने जो सवाल किया है, और आपके जैसे बहुत लोग व्यक्ति होंगे, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि एक तो कोविड के वक्त में मतलब ये इजाफा हुआ था मानसिक समस्याओं को लेकर, 30-40% लोगों को बढ़ गया था ये सब समस्याएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे देश में भी कई कारणों की वजह से जो है उस वक्त जो है वो चीज़ बढ़ गई थी, तो हो सकता है उसी दौर में इनको ये समस्या हुई हो। और जहां तक डिप्रेशन की बात है, क्योंकि ये सवाल किया है, तो मैं जरूर बताना चाहेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन एक इम्पॉर्टेंट साइकियाट्रिक बीमारी है जिसको व्यक्ति को पहचानना बहुत आसान है। 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी व्यक्ति को मन उदास है, या उसको काम में मन नहीं लग रहा है, या उसको थकावट या ऐसे एनर्जी लॉस हो रही है, अगर 3 ये हैं उसमें से 2 सिम्टम भी हों और उसके अलावा उसके नींद की समस्या है, या उसको भूख में कमी हो गई हो, या उसको अपने आप को हानि पहुंचाने के सिम्टम हों, तो हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। और उसके अलावा उसको उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड हो, जैसे ऑफिस में जाना बंद कर दिया है, स्कूल जाना बंद कर दिया है, या लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया हो, तब इसका बनता है डायग्नोसिस। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसको डायग्नोसिस बनाना बड़ा आसान है, नंबर वन। हमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, या हमें सीटी स्कैन और एमआरआई इसकी ऐसे ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ब्लड टेस्ट की भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात बहुत अच्छी है कि ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है, ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जैसे बलजिंदर जी ने कहा, उस वक्त ये समस्या हुई थी अगर डिप्रेशन की, तो अब जो है अब ठीक है जैसे बता रहे हैं, और लेकिन पता नहीं अब दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन सही तरह से डॉक्टर के टच में रहें, अगर दवा है, अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो उसको फॉलो करें, लेकिन दवा के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बताया हमने, हॉबीज, इंटरेस्ट, रिलैक्सेशन, प्रॉपर नींद लेना, लोगों से मिलना जुलना, वो सब भी करते रहें, तो वो ठीक रहेंगे, और अगर समस्या है तो अपने कंसल्ट करें अपने डॉक्टर के साथ।
1: सर बातचीत इस पर आगे भी करेंगे।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और मानसिक तनाव पर आज बात हो रही है। नंबर आपको डायल करने हैं 011-234-21080 या फिर 234-21082। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस विषय से जुड़ा, डॉक्टर राजेश सागर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप नई दिल्ली एम्स के मनोरोग विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं और साथ ही बाल और किशोर मनोरोग में आपकी विशेषज्ञता है, और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। सर, मेंटली आइसोलेशन की हम बात कर रहे थे, क्यों ये लोग महसूस कर रहे हैं आजकल ज्यादा, भले ही वो सैकड़ों लोगों से घिरे हैं, और इससे बाहर आने का क्या तरीका है?
1: देखिए, ये बात सही है कि आज के दौर में कई वजहों से एक लोनलीनेस एक समस्या काफी बन गई है, और इसके बारे में WHO ने भी चर्चा की है। ये पर डे 30 सिगरेट के बराबर है इसकी जो हानि होती है, और इसका जो प्रभाव है आपके मन पे है और शरीर में भी है, अलग अलग किस्म की बीमारियों से भी संबंध है। तो ये एक समस्या है, और जो अब आज के दौर में ये ना समझें कि सिर्फ बुजुर्गों को होता है, ये एडल्ट को भी हो सकता है और यंग बच्चों को भी हो सकता है। और ये भी भ्रम है कि अगर किसी के, मान लीजिए, 1000 फ्रेंड्स हैं आपके ऑनलाइन में या आपके सोशल मीडिया में, तो आपको जो है लोनलीनेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी आपके जो वर्चुअल फ्रेंड हैं या रियल फ्रेंड भी हैं आपके हैं, तो भी आपको लोनलीनेस हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार की सोच है। और क्योंकि आप किसी से कितना व्यक्त करते हैं या आपके आसपास कितने लोग हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी अपनी सोच है वो लोनलीनेस क्रिएट करती है, और इसका दुष्प्रभाव है आपके मन पर और शरीर पर, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी, ये सब चीज़ों से भी इसका संबंध होता है। अब इसकी वजह तो कई है, क्योंकि हर इंसान थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त होते थे पहले आपके, क्योंकि आप देखें कि हमारा जो बदलाव हुआ है हमारी जीवन शैली में, या जो मिलियो है सोशियो कल्चरल, जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब सारे आपके परिवार के, आपके चाचा या ताऊ या आपके सब जो है एक साथ रहते थे, तो अब वो चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पहले आपके सिबलिंग्स भी ज़्यादा होते थे, आपके भाई बहन होते थे आपके ज़्यादा नंबर, आप भाई बहन या तो सिंगल चाइल्ड हैं या दो हैं, तो आपके अपने सिबलिंग, क्योंकि वो बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं सिबलिंग्स जो हैं, तो वो नहीं है। तो ये जो, और पहले होता था कि जो मदर्स हैं घर पे रहती थी, हाउसवाइफ थी, अब वर्किंग है, तो कई, देखो वो बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ ये चीजें भी हो गई हैं। पहले आपका सपोर्ट सिस्टम था ये सब को लेकर, अब वो नहीं है। और दूसरे आजकल
0: मजबूरी हो जाती है हमारी संयुक्त परिवार में ना रह पाना, तो उसके अपने कारण होंगे।
1: हाँ, तो वो उसके अपने कारण है। और कुछ दोस्त जो है सेल्फ सेंटर्ड है, वो इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा में है, वो टाइम अपना नहीं दे पाते, तो ये सब भी हो सकता है।
0: बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: जी, अपना नाम दोहराएं।
2: मिसेस बेदी बोल रही हूँ।
0: अच्छा जी, बताएं अपना।
2: बड़ी रेगुलर लिसनर हूँ मैं।
0: ओके,
2: मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ये। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी।
2: हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ अपने बारे बताऊँ। मैं 76 की हो जाऊंगी, और मैं 36 साल से डायबिटिक हूँ, 16-17 साल से थायराइड भी है। अभी 2 साल पहले मेरी हिप की फ्रंट फेमर की बॉल टूटी थी, तो थोड़ी सर्जरी भी हुई थी बड़ी। तो पर मैं इन सब बातों के बावजूद, मेरी 5 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ, तो मेरे डॉक्टर कहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग है।
1: इसीलिए तो लग रहा है, हमको भी लग रहा है आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी आपकी बातों से, आपकी आवाज से, आपके एक तरह की कॉन्फिडेंस से लग रहा है। बिल्कुल।
2: हाँ, मैं भी साइकोलॉजी के ग्रेजुएट रही हूँ अपने टाइम,
1: तो बहुत बढ़िया।
2: हाँ, और कुछ देखिए, अगर पहले हमारी फैमिली में 15 लोग हम हर टाइम थे, तो पेरेंट्स ने कहना, हमने कहना ना मम्मी, उन्होंने कहा फिर क्या हो गया, ये नहीं तो वो कर लो, मतलब इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती जाती है।
1: बिल्कुल,
2: फादर ने भी यही सिखाना, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ के पैदा हुए, जैसे पहली छुट्टी गांव चले जाते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: वो लाइफ भी हमने बहुत एंजॉय करनी।
1: बिल्कुल,
2: आजकल अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं तो मेरे को लगता है कि इनको छुट्टी वाले दिन एक दो घंटे उनको मेंटली स्ट्रांग बनाने में लगाने चाहिए कि लोनलीनेस मत फील करें। मेरा बेटा है एक ही एक, पर मैं जब तक वो मेरे पास रहा कहती मैं उसको बेस्टी बुलाती रही हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो दोस्त हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो वो कम बोलता है और मैं खूब बातें करती हूँ, पर मैं उसको कहती हूँ उसका सिर खाई जाना कि ये बता वो बता, उससे ये थोड़ा थोड़ा हो गया कि वो मेंटली स्ट्रांग रहा।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी की बात है, और आप आज अपनी नजर जरूर उतारिएगा, और बहुत ही अच्छा संदेश आपने सभी लिसनर्स को भी दिया, हमें भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए। सर, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का भी हो जाए, क्योंकि ये भी एक तरह की मानसिक स्थिति है और लगभग हर उम्र में देखी जा रही है। क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है?
1: देखिए, OCD जैसा आपने बताया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है और उसमें मुख्यतः ऑब्सेशन होते हैं, कंपल्शन होते हैं। अब ऑब्सेशन का मतलब ये है कि कोई भी ख्याल बार बार आना
0: जी।
1: वो आप उसको कोशिश करके भी आप निकाल नहीं पाते, जैसे हाथ में गंदगी रह गई है तो उसके लिए आप बार बार हाथ धोते हो, या आपको लगता है मैंने हाथ यहाँ रख दिया तो गंदा हो गया, ये एक तरह का मन में डाउट है, दरवाजा मैंने बंद किया नहीं किया, बार बार चेक करते हैं तो कंपल्शन हो गया, या कुछ एग्रेसिव इम्पल्स आती हैं या सेक्सुअल इम्पल्सेस आती हैं, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों में जो व्यक्ति 24 घंटे में एक घंटे से ज़्यादा अपना वक्त दे रहा है कंपल्शन में, तो ये बीमारी का रूप हो सकता है।
0: अच्छा।
1: और ये बीमारी की बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये व्यक्ति को सालों तक रहता है। कहने का मतलब है, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं होता कि पहले ये बीमारी है या नहीं, ये बीमारी, क्योंकि देखिए हमारे समाज में, हमारे हम परिवार में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बहुत जागरूकता होती है, जिसको हम हेल्थ लिटरेसी बोलते हैं, मतलब बेहतर होती है, लेकिन मानसिक बीमारी को लेकर नहीं होती, और इसीलिए उनको पता भी नहीं होता कि बीमारी है, और पता भी हो बीमारी है तो नहीं, ये नहीं पता किसको दिखाना है, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है वो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते। तो ये कई व्यक्ति जब आते हैं हमारे पास, तो हो सकता है सालों से उनको हो, फिर कहीं पे उन्होंने पढ़ा होता है कि ये भी बीमारी है, तब आते हैं और दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं।
0: कई बार देखा गया सर, साफ सफाई को लेकर इसमें बहुत ज्यादा संजीदगी देखी जाती है पेशेंट्स में, इसके पीछे क्या कारण और कहां जाकर इसको रोक देना चाहिए?
1: नहीं, तो अगर देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉर्मली साफ सफाई जो होता है वो तो है, आपका नॉर्मल पार्ट है, लेकिन आपने मान लीजिए एक बार हाथ आपको लगा मैंने धोया है, लेकिन आपको लगा नहीं ये तो ठीक नहीं है, फिर से मैं धो रहा हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। दरवाजा आपने चेक किया लेकिन आप फिर से कर रहे हैं, ये मानते हुए कि मैं कर रहा हूँ गलत है और उसको बार बार आप कर रहे हैं, तो ये बीमारी का रूप हो सकता है। अक्सर ये ना सोचें कि सफाई का जो है व्यक्ति कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ को जब बार बार करते हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से उनको कष्ट होता है, तब ये प्रॉब्लम का रूप होता है। और ये बताना हम चाहते हैं कि ये बीमारी अक्सर छुपी रहती है, और लेकिन इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है, ज़्यादातर जो है अगर अपने ट्रीटमेंट सही कराएं तो इसकी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है।
0: बिल्कुल, तो सर क्या मेडिसिंस ही एक इलाज है या फिर घर पर कुछ चीजों का ध्यान रखकर या थेरेपी से भी या काउंसलिंग से भी इलाज मुमकिन?
1: देखिए, इसके बारे में बड़ा भ्रम है। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति को, किसी को कुछ प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प, अपने बारे में आप क्या कर सकते हैं। हालांकि आप मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत सारी ऐप्स भी हैं, जो जानकारी है वो सही रूप से लें कोई भी बीमारी को लेकर। पहली बात तो पहले तो अपने जो सेल्फ हेल्प के जरिए पहचाने कि मुझे क्या समस्या है, और हो सके तो आप अपने क्लोज लोगों से डिस्कस कर लें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बातचीत करें। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपका असेसमेंट करते हैं और अगर पूरा उसका डायग्नोसिस बनता है अगर तभी उसकी फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब ट्रीटमेंट देते हैं तो दवा एक इम्पॉर्टेंट, अगर दवा की जरूरत होती है तो दवा दी जाती है।

0: जाती है दवा के साथ साथ, हो सकता है उनसे बातचीत की जाए जिसको हम काउंसलिंग भी कह सकते हैं, या उसके साथ साथ उसको थेरेपीज भी होती हैं जो दी जा सकती हैं, जैसे CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या, तो वो भी दी जाती है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें ये भी करना है, वो व्यक्ति को देख कर ही बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है। अलग अलग किस्म की थेरेपीज हैं तो, और उसके अलावा और भी तरह की थेरेपीज होती हैं जिसको हम RTMS कहते हैं, इसको न्यूरो मॉड्यूलेशन कहते हैं, और तो वो सब भी हो सकती हैं। तो वो कहने का मतलब है कि जैसे बीमारियां अलग अलग हैं उस तरह से ट्रीटमेंट भी अलग है, हर व्यक्ति के लिए वो कस्टमाइज होता है कि हर व्यक्ति को ब्लैंकेट रूप से ना लें, क्योंकि ये सब तरीके का ये ट्रीटमेंट होता है तो ये दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्या उसकी कंडीशन है, किस हालात में है, पहले उसने क्या ट्रीटमेंट लिया है, तो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट दिया जाता है।
1: बिल्कुल। तो सर, जो लोग एक बार इस स्थिति से गुजर चुके हैं, चाहे वो OCD हो या डिप्रेशन हो, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी केयर किस तरह से की जानी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हो सकती हैं जिनसे वो वापस उसी स्थिति में जा सकते हैं?
0: ये बात बिल्कुल सही है कि मानसिक बीमारियों का हमारा जो है ट्रीटमेंट गैप बहुत ज्यादा है, उसका थोड़ा मैं बताऊंगा। ट्रीटमेंट गैप का मतलब, अगर 100 व्यक्ति को बीमारी है तो उसमें से 10 या 20 ही ट्रीटमेंट कराते हैं, 80 से 90 नहीं करा पाते। तो कहने का मतलब, और उसके भी कई कारण है। तो अगर किसी को बीमारी हुई है, जैसे मान लीजिए डिप्रेशन का एग्जांपल लें, तो डिप्रेशन प्रॉब्लम हुई है तो उसको 6 महीने या हो सकता है 1 साल या 2 साल उसकी दवा चलेंगी। तो अक्सर ये सवाल हमसे फैमिली पूछ, क्या इसको दोबारा नहीं होगा क्या? तो हम कहते हैं कि देखिए, जैसे आपको आज बुखार हुआ है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कोई डॉक्टर अगली बार नहीं होगा? आज आपको चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है, तो क्या आप कह सकते हैं अगली बार नहीं होगा? उसी प्रकार से मानसिक बीमारियां भी हैं। तो अगर उस किसी को आज प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है अगली बार भी हो जाए, लेकिन होगा तो फिर ट्रीटमेंट कराया जा सकता है।
1: बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: जी।
1: जी हेलो
2: मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं कामरान बात कर रहा हूँ नोएडा से।
1: जी
2: सर, मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में। एक्चुअली मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन 8-9 घंटे की शिफ्ट के बाद मैं घर पे भी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर मैं एक स्मोकर हूँ और स्मोकिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है जैसे रात में जागना है मुझे, तो चूंकि आप जानते हैं सर जो स्मोकर्स होते हैं वो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं बाकी होते हैं वो स्मोक करते हैं जागने के लिए, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्विट करना चाहता हूँ। विल पावर मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग है सर, मैं बहुत हेल्दी हैप्पी हूँ, परिवार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है सर, बस एक ये जो आदत है ये छूट नहीं पा रही। विल पावर इतनी स्ट्रांग है, आप मुझे कुछ कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन जब इस मामले में बात आती है तो मैं क्विट नहीं कर पाता सर। कई तरीके आजमा के देख लिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो मेंटल हेल्थ पे तो वैसे कोई इसका खास असर नहीं है, लेकिन छोड़ना ही मुझे पता है कि अच्छी बात है, तो वो हो नहीं पा रहा सर। तो उसको कैसे स्ट्रांग करूं, मन को कैसे मजबूत करूं सर?
0: नहीं, आपने खुद ही कहा कि मेरा मन तो बहुत स्ट्रांग है मगर इसको लेके नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि जो भी इस, ये भी एक प्रकार की समस्या होती है निकोटीन से लेके, जैसे आपकी स्मोकिंग है, आप जहां तक इसका ट्रीटमेंट है इसका संभव है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट संभव नहीं है। इस तरह की कुछ जो दवा दे सकते हैं या और भी थेरेपी दे सकते हैं, तो ये हो सकता है। पता नहीं आपने इसका प्रॉपर जाके कंसल्ट किया है या नहीं अपने डॉक्टर से, तो आई थिंक यू शुड, आपको करना चाहिए। और
2: सर डॉक्टर से मैंने पता किया था तो वो कह रहे थे जैसा आपने शुरू किया वैसे छोड़ दीजिए। तो
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप फिर किससे मिले थे? आप मनोचिकित्सा विभाग में मिले हैं या अलग मिले हैं?
2: नहीं, मैं फिजिशियन से मिला। ना
0: ना ना ना, आपको उससे मिलना होगा, मनोचिकित्सा, और खासकर जिनका जो ड्रग डिपेंडेंस या जो नशे का जो ट्रीटमेंट करते हैं जो सेंटर है जिन पे हुआ, तो उनसे आप मिलिएगा और बिल्कुल आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा और इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट हो सकता है आपका।
2: थैंक यू सो मच सर।
0: या
1: सही काउंसलिंग और मेडिकेशन के साथ हर समस्या का समाधान मुमकिन है, ये संदेश डॉक्टर साहब की ओर से आप सभी के लिए। सर, एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है। टेंशन की वजह से सुबह उठने के बाद उबकाइयां बहुत आती हैं और सारी रात सपने बहुत आते हैं, ये कुछ लक्षण इन्होंने शेयर किए हैं हमारे साथ। बलबीर सिंह धवन है हांसी हरियाणा से, क्या ये किसी कोई इशारा है मानसिक

0: तनाव का?
1: देखिए नॉन स्पेसिफिक है, अगर एक तो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि तनाव है, स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस की जैसी बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रेस है तो अगर उनको घबराहट के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, या उदासी के लक्षण हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, बातचीत करें उनसे, तो वो पूरा असेसमेंट कराना होगा उनको अगर किसी से, एक्सपर्ट से संपर्क करके तो। और हो सकता है शुरुआती चीज़ हो, बट किसी से बात, एक्सपर्ट से बात करने में कोई हर्जा नहीं है, आई थिंक उसमें उनको करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। अब सर चलते चलते कुछ बेसिक टिप्स आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से अपना सकते हैं और मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। छोटे मोटे स्ट्रेस हमें इफेक्ट ना करें, हम पर कोई असर ना डालें, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी?
1: देखिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हमारा हमेशा संदेश रहता है, जब हम हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ उसी का अभिन्न अंग है, हमेशा उस पर ध्यान दें। और हमेशा हम कहते हैं द वे वी टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, सिमिलरली वी हैव टू टेक केयर ऑफ इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। अगर हमें चोट लग जाती है, हम तुरंत ही पट्टी करते हैं या यू नो डेटॉल लगाते हैं, अगर हमें लगता है मानसिक कुछ समस्या है तो जरूर उसका भी समाधान होना चाहिए और उसके बारे में भी हमें जागरूक होना चाहिए और उसी पे हमको भी उसके लिए, उसके प्रति उसके लिए सीरियस होना इम्पॉर्टेंट है। और मानसिक समस्याओं को अक्सर ये होता है कि हम कुछ देखते हैं कि उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स को सीरियसली लिया जाता है। मानसिक समस्या, किसी व्यक्ति को उदासी है तो घर वाले कहते हैं कि हम इसको बाहर घुमाने ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा। हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन अगर बीमारी है तो वो ठीक नहीं होगी, उसके लिए उसको समस्याओं को। तो कहने का मतलब ये है कि जो है इसको, और ये ना सोचें कि कोई भी व्यक्ति जो है मानसिक समस्याएं हैं उसको, तो वो कमज़ोर है किसी रूप में, क्योंकि ये एक तरह का ये उस पर लगाया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी है बहुत सारी चीज़ें कि इसका इलाज संभव नहीं है, जीवन भर दवा लेनी पड़ती है, बहुत सारा भ्रम है मानसिक बीमारियों को लेकर। तो हम यही कहेंगे कि अपने आप को जागरूक रखिए, अगर कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, जैसा हमने बताया अपने सगे संबंधी या दोस्त उसका संपर्क बना के रखिए। तो इम्पॉर्टेंट बात है गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल, उनसे कनेक्टेड आप फील करें, और अगर कोई भी बात है तो, और अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को कायम रखें, जो भी रिलैक्सेशन है या वो सब भी कर सकते हैं, और अगर सुविधा है तो जरूर उससे लेने में संकोच ना करें, क्योंकि स्टिग्मा बहुत अटैच्ड होता है। इसको भी, मानसिक बीमारी को भी फिजिकल प्रॉब्लम की तरह ही लेना चाहिए, अगर समस्या है उसको डिले ना करें, और जैसा वो डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करें। अगर वो कहते हैं दवा लेनी है तो लें, और अगर क्योंकि कई बार उसके फिर दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आपने बीच में उस चीज छोड़ दी तो।
0: बिल्कुल, अपनी झिझक छोड़नी होगी, और साथ ही जिस तरह से शारीरिक बीमारियों का हम इलाज करते हैं उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल रखने की बहुत बहुत जरूरत है। ये संदेश हमारी ओर से आप सभी लिसनर्स को, और डॉक्टर राजेश सागर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बात करने के लिए और हम सबको सही दिशा दिखाने के लिए भी। दोस्तों उम्मीद है कि रेडियो डॉक्टर की आज की इस कड़ी ने आपके मन की कई उलझनों को सुलझा दिया होगा। अंत में आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आपकी सेहत और आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। अगर कभी भी मन बोझिल होने लगे तो किसी अपने से या संबंधित डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है। तो मजबूत रहिए अच्छी सेहत के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए यूं ही FM रेनबो के साथ। अभी के लिए मुझे यानी नाज को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: चार बच्चों के आयु सुनते आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं, इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है, जो शायद

0: भी हम किसी और से करते हों, इस फिजा में, इस सबा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग। मैं सईद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी FM रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी FM रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
0: आपकी आवाज सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जुबानी इन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल। मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूंगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफ़ी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंडोरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन

ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहां तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू हो गई, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एक्सेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रेस्पॉन्स इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम एफेक्टिवली रेस्पॉन्स कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उस समय होता है ना एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं, लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता
1: है? जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं करेज को इस तरह देखता हूं कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें।
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मैं चाहूंगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूंगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुंचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी।
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रेस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एमिनेशन खर्च करना।
0: ऑलराइट, बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजेंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं, थोड़ा सा गीत संगीत भी सुनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है वो?
1: जी मैं चाहूंगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: दिस अ ग्रेट सॉन्ग, पुरानी फिल्म का है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
1: जी,
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हियर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद है यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे, पन्ना की तमन्ना बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे, तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस होने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज में, यू नो। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोरदा के फैन है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोरदा के फैन है, लता मंगेशकर जी के फैन है, भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मेन एंड वेमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो। ऐसे एरियाज में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है

0: कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
1: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और एसएसबी की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं, और सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहाँ बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूँ तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: एसएसबी में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई तो आपको ये एसएसबी में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब एसएसबी ज्वाइन किया तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
0: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है वो मैं कहना चाहूँगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
1: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि एसएसबी ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
0: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी।

0: हुई और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
1: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और खासतौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज थी उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया, और बॉर्डर एरिया हो या मैंने जैसे आपने कहा, आप भी बता रहे हो और मैं भी बता रहा हूँ अपने श्रोताओं को कि देश के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं जहां पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है उसको उसका सामना करने के लिए उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है, और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा तो आपके वो क्षण कैसे थे?
0: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला उसमें मैं अकेला नहीं था, पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूँ।
1: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
0: जी, बताना चाहूँगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूँ,
1: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
0: जी बिल्कुल।
1: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है सैयद अफसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है?
0: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
1: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
0: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
1: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जांबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर्स से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपकी आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए

0: तैयार हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं। इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
0: भावुक क्षण है। सवाल उतना आसान नहीं है, है ना? ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना? अच्छा मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ़ोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
1: जी ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज़ के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं। ऐसे में परिवार का अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सेक्रीफाइस करता है।
0: देखो परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं, तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपनी प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070। हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है। और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं
1: जी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
0: अरे इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है। तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश किशोरदा की आवाज में फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं। सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी?
1: जी, मैंने SSB वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDCE उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा, और इससे पहले कि आप उत्तर दें मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो है यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं, और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदीगर कोकानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते

0: बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं, और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से, राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है, और गुलाफशा इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि एसएसबी कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एसएसबी को सैल्यूट दे रहे हैं, एसएसबी कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं। सुरेश कुमार 68 बटालियन एसएसबी मणिपुर LNO ड्यूटी कर रहे हैं सर, और LNO ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? ASI सुरेश कुमार आपसे परिचित हैं, एसएसबी के ही हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए। LNO
1: बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है।
0: okay.
1: कि आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहाँ तैनात है उसके अलावा अभी वहाँ पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहाँ पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहाँ पे बेसिकली उनका KLP वहाँ पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियाँ मणिपुर में हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपको ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें, और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें, और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें, और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहाँ पे जो है पूरी तरीके से उतारें, और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी।
0: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक है, और आपको दिल से वो बधाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूँ प्रोग्राम, एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के जरिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूँ, लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन।

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर था वो कैसा था?
1: जी, यह सफर मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफर रहा है. मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ. समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया. एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोरल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. इस सफर ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई. लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है.
0: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं. जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था, और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं. और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं. तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सईद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है?
1: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है. जो मेरे लिए है मैं बताना चाहूँगा. मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे. एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए.
0: वाह, और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं. तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं. नंबर है 9868107070, 9868107070. असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं. यहाँ पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा. थोड़ा सा चीज़ों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हों. अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़ुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की ज़ुबानी, अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो क्या होगा?
1: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें. ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें. अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए. फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें.
0: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिले तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
1: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सईद अफसर से कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज़ मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है, उन्हें हमेशा याद रखना।
0: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है। मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं आकाशवाणी के प्रति, उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
0: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है, बहुत ही जल्द हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप, जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम मैं अपने ही अंदाज में लेना चाहूँगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाई गांव CTGD पर्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर, नाम अपना नहीं लिखा। हाँ, सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंदन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफकोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा हैं, 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में नहीं, टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूँ दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं, इसलिए टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी विचार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीमित हैं।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
1: श्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।
2: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टेब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वालोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। इस बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज कश्मीर में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों और कार्यक्रमों तथा पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की गतिविधियों की समीक्षा की। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उधर भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: झिलीबिली म्यूजिक बजाए जुआ,
1: झिलीबिली म्यूजिक बजाए जुआ, झिलीबिली म्यूजिक बजाए जुआ।
2: शिलंगरे मनाली ताली हिंदो,
0: शिलंगरे मनाली ताली हिंदो,
2: तुम्हार हाथर गीतार खनी
0: झिलीबिली म्यूजिक बजाए जुआ,
1: झिलीबिली म्यूजिक बजाए जुआ, झिलीबिली म्यूजिक बजाए जुआ।
0: মনালিসা মনালিসা মনালিসা
3: তোমাক সুজিলে কোন লিওনার্দোই
4: কেনেকে

0: सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकास क्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्य रक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युव महिला सशक्तिकरणे आगा खान विकास तन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरोपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् भारत यात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षा चिन्तां वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघु वायव्य मञ्चानां संचालने पूर्ण प्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ली आरक्षि आयुक्तः अनुराग कुमारः शिखर सम्मेलनस्य सुरक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतंकवादीसमूहाः वा अवसरेऽस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानाञ्च कृते संकटम् उत्पादयितुम् एतादृशानां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समित्याः 81वें सत्रावसरे संजातम्। अवसरेऽस्मिन् डॉ टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्य क्षेत्रे विशेषतः मातृ शिशु कल्याण दिशि अथ च असंचारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ संख्यकैः आयुष्मान आरोग्य मन्दिरैः जनसामान्यस्य समीपम् उच्च रक्तचापस्य मधुमेहस्य सामान्य कर्करोगाणाञ्च प्रारम्भिक परीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता। सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगम प्रेषण मार्गाः कल्पिताः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानः मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत्। एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मन्त्री स्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः क्वचिच्च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ 8 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: বাতৰি ভাষাতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো সংস্কৃত মালাকাৰৰ কণ্ঠত দুটি আধুনিক গীত।

0: কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগৰ সন্দৰ্ভতো পৰামৰ্শ দিয়ে। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি আগবঢ়াইছে জিন্তিৰাণী ডেকাই।
1: মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মিলন কক্ষত আজি নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান আৰু সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ডঃ নীলাক্ষী বৈশ্যই বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানত মাতৃ আৰু শিশুৰ পৰিপুষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন বিভাগৰ সমন্বিত পৰিকল্পনা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ত ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। সভাত চাহবাগিচা অঞ্চলত স্বাস্থ্য শিবিৰ আয়োজন আৰু ৰক্তল্পতাগ্ৰস্ত শিশু চিনাক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ যৌথ স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ক নিৰ্দেশ দিয়া হয়। তদুপৰি বিদ্যালয়সমূহত পোষণ চেম্পিয়ন বাছনি আৰু পুষ্টি সজাগতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। একেদৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক পানী পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বাস্থ্যবিধি সজাগতা অভিযান আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হয়। ডাক বিভাগক প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি তথা মাতৃ আৰু কন্যা শিশুৰ কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে ৰূপায়ণৰ বাবে সমন্বয় বৃদ্ধিৰ আহ্বান জনোৱা হয়। দৰং জিলা মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি বিয়লি নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সভাকক্ষত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। শিলচৰৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি বিভিন্ন ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। ৰাইজৰ দল ফৰাম ফৰ ছচিয়েল হাৰ্মনীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। মনোনয়ন দাখিলৰ স্থানত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰি তুলিছে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ গড়চুক আৰক্ষীয়ে সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত আজি অসম সচিবালয়ৰ গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়া দেৱলীনা পাটোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে অভিযুক্ত বিষয়াগৰাকীয়ে সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ আশ্বাস দি তিনিজন লোকৰ পৰা 45 লাখ টকা উৎকোচ লৈছিল। এই বিষয়ে ভুক্তভোগী লোককেইজনে আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। চীনৰ মকিত অনুষ্ঠিত মহিলাৰ জুনিয়ৰ হকী এছিয়া কাপ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলটোৱে পাকিস্তানক 19-0 ধূলিচ্ছা কৰি ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। খেলখনত আৰম্ভণিৰ পৰাই ভাৰতীয় দলটোৱে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰতিযোগিতাখনৰ এই অন্যতম বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰে। ভাৰতে 19টা গ'ল, 18টা পেনাল্টি কৰ্ণাৰ আৰু 1টা পেনাল্টি ষ্ট্ৰক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে 1টাও গ'ল, কৰ্ণাৰ অথবা পেনাল্টি ষ্ট্ৰক লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয়। ভাৰতৰ হৈ পূজা মালিকে 3টা গ'লেৰে হেট্ৰিক অৰ্জন কৰে। ভাৰতীয় দলটোৱে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোৰিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত শনিবাৰে হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলৰ বিজয়ী দলটোৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ পুৰুষৰ জুনিয়ৰ হকী দলটোৱে জুনিয়ৰ হকী এছিয়া কাপত ইতিমধ্যে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। নলবাৰী জিলাৰ বানেকুছিত পেপচিকৰ আলু চিপ্ছ প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগৰ শুভাৰম্ভ। এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে নামনি অসমৰ 7,000 কৃষক উপকৃত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকাশ। অসমক সম্পদভিত্তিক ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰযুক্তিভিত্তিক ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ বাবে IIT গুৱাহাটীৰ এটা অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস পালন। আৰু মহিলাৰ জুনিয়ৰ হকী এছিয়া কাপ প্ৰতিযোগিতাত পাকিস্তানক 19-0 পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
4: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
5: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping include Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the BRICS summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit comes amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Earlier this week, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal in a media briefing said Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders on sidelines of the BRICS summit. Delhi Police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by Agha Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. During Prince Agha Khan V's interaction with the Vice President at Uparashtrapati Bhavan, the two leaders discussed the Agha Khan Development Network's contributions to water and sanitation, women-led self-help groups, education and community development, and appreciated its initiatives in East Africa and Afghanistan. Prime Minister Narendra Modi said during their meeting, they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Agha Khan Development Network. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said that India is the world's third largest startup ecosystem with more than 2,30,000 startups. The minister today launched the curtain raiser for the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2026 in New Delhi. He said more than 50% of startups are now coming from small towns and not metros, which reflects the widening reach of entrepreneurship and innovation across the country. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. Now India will face the winner of the quarter-final clash between South Korea and Malaysia in the semi-final on Saturday. The Indian men's team has already entered the semi-finals of the Junior Asia Cup. In women's cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final of Asia Cup in Dubai at 8 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
2: 6900453528।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 8:45ৰ পৰা ক্ৰমে সমাচাৰ সন্ধ্যা, News@9 আৰু স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज

0: orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है.
0: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है. उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए.
0: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल. आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन. लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040. इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं. दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई. इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं. इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं. एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी. भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है. 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी. शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी. प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं. रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे. उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं.
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है. वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदारोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के

0: विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain, virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul including a gold. And in Women's Junior Asia Cup Hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
3: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल. आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन. लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040. इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी. अलोंगसाइड इसरो India's private space sector is also surging in a big way.
2: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
3: ISRO, which stands at the heart of this journey, has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. Its capabilities serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets. ISRO's technologies and partnerships serve not only India but the wider world.
2: New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend, with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are expected to arrive tomorrow. The BRICS summit will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Our correspondent reports that preparations are underway in full swing ahead of the prestigious event.
4: The national capital is all decked up to welcome world leaders for the summit, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to touch down in Delhi tomorrow. The Delhi police has made elaborate arrangements in order to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. Around 15,000 Delhi police personnel and 200 companies of paramilitary forces have been deployed in the national capital. Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal, said that specialized surveillance cameras have been deployed along routes to be used by the visiting dignitaries.
5: At least 16 heads of state or heads of international organizations are participating in the event. The Delhi police has made extensive arrangements for this occasion. To put these arrangements in place, we have ensured multi-agency coordination and paid close attention to traffic management. We have made detailed deployments covering security, traffic management and law and order. Our objective is to ensure that we organize a safe, secure and seamless event.
4: India's chairship is centered on the four pillars of the theme: resilience, innovation, cooperation and sustainability. Since assuming the chairship, over 350 meetings have been held. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said, as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirm their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defense, clean energy, advanced technologies and talent mobility. This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
2: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by the Aga Khan Development Network in areas such as water and sanitation, education, maternal health and employment generation. Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi-led government has completely transformed the country's disaster management system and set the goal of zero casualty. Mr. Shah was speaking while chairing the third meeting